माटो सुन्न खाने सँगै ज्यामी रे शिखर तुल नवलपुर भरले पोखा रे राली गुण लटर मैं सेल्लुको ज्यान छिन्दो पाँच घुम्न आऊ मै ज्याङ

Elimbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: तपाईँ अहिले हेलोम्बो एफएम 89.6 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ।
1: अब रङ थेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी समक बसुगो याङला उमेर से परमेश्वर से प्रतिबिम्बित आलामुला जयमसी तथा नमस्कार लासो फ्याफुल्ला कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ तथा नला जीवनला छ्यान गतला श्रृङ्खलाला अङ्क 26 राङ्गी स्वागत मुला न वियोग तामाङ क्रिश्चियन कदेशी प्राय 25 वर्ष दिला मेगदेला बारेरी पूर्वधारी थानमुला थेनी गदे मनमुला कि थेनी गदे आत्मिक युद्धला लागिरी याङबरी लानन जवान मुला देन 60 वर्ष वा छु भन्दा फेरि मुभक अदेदा हाइमै हाइमैमा उच्च स्तरीय गेल लबरी देन प्रदर्शन लबरी असक्षम मनमुला तिनीङा रङ्गदे देन न्यासे लबरी सेमुला विषम जब याङला आबा परमेश्वर देन घनिष्ठ सम्बन्ध तला चुसे उमेरला कारक द पुरान रूपी रद्द लबरी हमला तिग्द विषम चु याङला उमेर भन्दा लानन लाना परमेश्वर देन छ्यामला सम्बन्ध हिन्बा जोसे प्रभावकारी सेवा लबा याङला क्षमता निर्धारण लला परम्परागत विचार तिगा मुबा विषम याकर्की ब्योन मी हाइमा प्रभावकारी अगुवा दोबरी अहम तिग्द विषम थेने गरेदा जब अगुवा दोबरी आवश्यक आत्मिक युद्धला अभाव तब मनमुला याङदा विवा मुलाकी बुद्धि उमेर छन्नोन हाला चु तर्कला समस्या चुहिन बकी जब याङ परमेश्वर देन सम्बन्ध थन्मुला याङ याङला राङलन बाहेक स्यन्दो ज्ञानला श्रोत्री दोबरी हाम्बताला याङ परमेश्वर ज्ञान ज्ञान याङबरी हाम्बताला जुन हाजीबाई नोन मिला बुद्धि भन्दा लानन गेन मुला सेमलाबाम थेनी गदे कादे वर्ष शोभमुला जब समुएल इसै कोलाकादे मध्ये हाल्दा इजरायलला ग्लेला रूपरी डम्बा बिसी च्याबरी निजे इसै से राङला निस जेठा कोलादा थे हनङ प्रस्तुत लाजिए तसै दुई से थे बेनन्द उस्वीकार लाजिए बेनन्द अचम्म न्यान्जी चु बेनन भन्दा आले मुबा जा दाऊद जेदा परमेश्वर से राजाला रूपरी नियुक्त लसुजी पहिलो सामुएल 16 अध्याय 7 तसै परमप्रभुसे समुएल दा सुङजी थे जवा देन गे तसै नोन थेला ख्याल थलासुगो गाई थेदा अस्वीकार लाबा मुला परमेश्वर से मिसे रङ्गदा च्यासु मुला मिसे रूप च्यासी विचार लसुला तसै परमप्रभुसे तिङ्री च्यासी विचार लसुला दाऊद सम्भवत 10 हिन्दे 15 वर्ष उमेर मुबा थेराङ तासी ग्लेला रूपी अभिषेक लबरी थे लानन जजा मुबा विवा धारण मुबा निसन्देह थेला याकर्की जेठ जोजो लानन जब छनोट तला तसै जब परमप्रभुसी समुएल दा इसरायलला भावी राज्यला रूपी दाऊद दा नियुक्त लबरी निर्देशन पिन्छुजी तब परमप्रभुसी तिगा लसुबा मुबा बिसी सेसुजी लिच्छ जब बेनन इसरायली सेना गोलियात देन लोङजी दाऊद फेदेन छे बढी उत्सुक मुबा दाऊद दा सेनारी सिपाहीला रूपी हाजीबै अनुभव आरे मुबा थेन्दे थेसे हाजीबै सैन्य कवच कोनमा आरे मुबा तसै नोन थे नोन मुबा जोसी गोलायत दा सेबरी हमला बिसी परमेश्वरी भरोसा थन्जी जो याकर्गी गेन उदाहरण हिन्बा कि उमेर सी वास्तविक री फरक आलमुला परमेश्वरी भरोसा थन्स्युगो थेन्दे रोला शक्ति प्रयोग लाभा हिन्बा जोसे लामा सेवा प्रभावकारी तामुला लुका 1:38 ओछे मरियम से स्वर्गुद दा ना परमेश्वर दा तेनबा मी हिन्ना नदा रंग से विवा रंग नोन तगई बिसी विमहेन से स्वर्गुद निजे मरियम रंग मन लानन कृष्ण गदे चंगना उमेर भी आत्मिक रूपी परिपक्व तमुला पावल से तिमुती दा 16 हेन्दे 21 वर्ष ल उमेर री सल्लाह पिनबरी थाल दिजिए उमेरला आधारी आत्मिक युद्धला निर्धारण लबरी अहम विचार लदोबा स्यन्दो लालन कारक कादे मुला खेप्पा रेङ्बो कोला गदेसे एन अद्भुत सेवा गदे लबरी हमला बाइबल ज्ञान चुला उदाहरण अब्राम हिन्बा जोदा 75 वर्ष ल उमेर री सेवारी न्योइबा मुला हेन्दे मोसा जोसे 80 वर्ष उमेरी इसरायलीका देदा मिश्र ग्याम फिर्क्या तेजी खेप्पा मिगादी ख्रिस्ल शरीर गेन योगदान पिनबरी हाम्बा तमुला तिग्दविषम थेनिगा देदा विगतला सिकाइला अनुभव गरे मुला जुन थेनिगदेशी सन्त गदे देन जुबरी हाम्ला याकर्की बिब मुला फिर्क्याब्द रूप च्यासी हलाइदा मूल्याङ्कन लाला आधा मुला याङसे हलाइदा थेला उमेरला आधारित शक्तिशाली सेवा लावरी असक्षम बिसी मूल्याङ्कन अलावरी लालन होसिया टादोला जब परमेश्वर चाहिँ हाजीबै मेरी गे लस्युला थेला उमेर जतिसुकै तसै नन् थेसे तिगा लावरी हाम्ला विवाह तामला हाजीबै सीमा आतामुला आमेन रङ्गिला जीवन रे परमेश्वर चाहिँ प्रशस्त आशिष पिन्छु गए प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङ्ला भाषारी न्यान्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माइ फेथ कार्यक्रमलाई बारे रङ्गिला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसाम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98 85 53 339 हस्त त्यो समय रिङ बिदा दाजी रङ्गी छङमदानु जयमसी नमस्कार
0: टाइम चेक It's 7 p.m.